0: नमस्ते नमस्ते। हाँ सब ठीक है। अरे टेंशन लेने का नहीं, बात तो जरूर बन जाएगी। अच्छा अच्छा बिल्कुल ठीक है। और नहीं तो क्या, चारों तरफ देख रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ऐसा कीजिए, आप जब बाद में फोन कीजिए। अच्छा अच्छा बाय। कांचा, ओ कांचा।
1: जी मैम साहब।
0: अरे जी जी क्या लगा रखा है, चल जा एक पान लेके आ।
1: अच्छा मैम साहब।
0: पर ये अभी तक ये जंगे नहीं आया, क्यों इतना लेट किया उसने? मेरे को तो बोला था जल्दी आऊंगा, मगर अब तक नहीं आया।

0: नमस्ते भाई जी।
1: अरे नमस्ते नमस्ते, तो मैं तो अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी।
0: क्यों भाई जी?
1: बहुत लेट किया तुमने इसलिए। अरे तुम तो अकेले आए हो क्या?
0: नहीं भाई जी, जंगी कभी अकेले नहीं आता है। जब जंगी आता है माल लेकर ही आता है।
1: अच्छा अच्छा, तब बोलू मैं, कहाँ है?
0: दो नंबर रूम में छोड़कर आया हूँ।
1: माल तो अच्छा है ना?
0: माल में कोई कमी नहीं है, पहला नंबर माल है।
1: अच्छा तब बोलो दाम कितना है?
0: आपकी इच्छा भाई जी, मेरा माल कैसा होगा वो तो आपको पता है।
1: अबे बोलना यार।
0: अच्छा ठीक है, एक दीजिए ना।
1: अच्छा ये चेक लेकर जाना।
0: ठीक है मैं जाता हूँ।
1: और सुनो, अब की बार आओगे तो दूसरी माल लेके आना। कब आओगे?
0: एक महीने की बात।
1: अच्छा ठीक है।
2: मैम साहब पान।
1: अच्छा तुम दो नंबर रूम पर जाना, और अभी जंगे ने एक माल लेकर आया है उससे मेरे पास लेकर आना।
2: जी मैम साहब।

0: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ इधर सब ब्लड चेक हो गया ना? क्या दो नंबर की लड़की को HIV हुआ? अच्छा अभी मैं बाहर करती हूँ उसे। कांफा
1: जी मैम साहब।
0: हाँ वो दो नंबर बेड की लड़की को जरा इधर लेके आओ।
1: अच्छा मैम साहब।
0: ओ लड़की तुम अब मेरे काम की लायक नहीं रही। क्यों भाई जी तुम चुनना चाहती हो हा? तेरे ब्लड में HIV है इसीलिए तुम अब मेरे काम की लायक नहीं हो।
2: नहीं नहीं मैं जाना नहीं चाहती। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे को ऐसा मत करना मैम साहब।
0: तू बैठ साली कांचा। ए कांचा चल इसे धक्के मार के निकाल दे यहाँ से।
1: ठीक है मैम साहब।